नोगिया ए या मैये आई ए या के कनाका एको मो महलोको ए हा नई आई ए भाई कहबा ए या नो कऊकु ओ कले ओ बहु नोगिया.